0: বাজে কি ভো কিন গালা না হাত
1: হ্যাঁ দুখে কষ্ট না খানে দিন না ভাত দুখে কো দুই গাছ দিন রাত অনি গালা মা উন্নত হাত গর্ষণ বাজে
0: अब चिन्ता गर्नु पर्दैन रोलपाली मुस्कान डेन्टल क्लिनिक छ नि तपाईँको साथ
2: हो दाँतका सम्पूर्ण रोगीहरूले अब पर्दैन चिन्ता लिन रोलपाली मुस्कान डेन्टल क्लिनिक सुनिल स्मृति चार सुनिचौर रोल्पामा जानुहोस् निको हुन
3: हजुर हामी का

0: आबो नजिरे बनाई गेम ये लो गेम जो मिल के मालाये ओमले मलायो के मालिये
1: बंसंगो सजुरी सिओ गेम बारी लो बाली नाली कुचुला चुली यात्रा रो सतांसो चिनी ने सांसो सहरे के खेले या
0: बंसंगो लंबेला जी के मालिये नेवला जी की नी पांच सोना खरना मारे मिली देखो नहीं सानो सो नेह किस नहीं
1: बतास उचुली जो बेला तो गीजिन के कोटो लो नेह की सतांगी ने एनोखे मछिनी ने सांसो किस नहीं है
0: नेहला जी ने निताई गेम मने के बच्ची सुनो अरुले मने के बसया
1: के छ थामला पोयालो नेलागी किसन किनी के छ गाउडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनछरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाए उनी कार्यालयले खबर दिइए
0: अनुरोध सुनछरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा